तनु ही सम त्रिपुरारि तनु विदित सकल संसार कौशिक सुनो बंद एह बाल कुटिल काल बस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाहो उबार कहित ताप बल रोष हमारा सूर समद करनी करही कही न जनाब ही आप विद्यमान रण पाय कायर करही प्रलाप राम मात्र लघु नाम हमार परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुलहि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर